नहीं आ रहा है कि तुम इससे बात क्यों नहीं कर रहे हो। मैं बस ये समझना चाहती हूँ कि क्या हुआ है। अगर मैं कुछ कर सकती